0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: वैटिकन में स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में संत पापा लियो चौदहवें ने विश्वासों को याद दिलाया कि यीशु हमें हमेशा और बिना शर्त प्यार करते हैं और हमारे लिए उनका प्यार हमें दूसरों को प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। वैटिकन स्थित संत पेतुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 10 मई को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
0: आज के सुसमाचार पाठ में हमने उन शब्दों को सुना जिन्हें यीशु ने अंतिम ब्यारी के दौरान शिष्यों से कहे थे, जब उन्होंने रोटी और दाखरस को अपने प्यार की जीवित अभिव्यक्ति में बदल दी। ख्रिस्त कहते हैं,
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पोप ने कहा कि यह बात हमें इस गलत फहमी से मुक्त करती है कि हमसे प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, मानो कि हमारा धर्मी होना ईश्वर के प्यार के लिए जरूरी शर्त हो। इसके बदले उन्होंने कहा, ईश्वर का प्यार हमारे धर्मी होने की शर्त है। हम ईश्वर की इच्छा अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन तभी वास्तव में करते हैं जब हम हमारे लिए उनके प्यार को पहचानते हैं, जैसा कि ख्रिस्त दुनिया को दिखाते हैं। इस तरह यीशु के शब्द एक निमंत्रण है कि हम उनसे संबंध जोड़ें।

0: बदले में कुछ लिए बिना जीवन देता है। क्योंकि ईश्वर ने हमसे पहले प्यार किया है, हम भी प्यार कर सकते हैं। और जब हम सचमुच ईश्वर से प्यार करते हैं, एक दूसरे से भी प्यार कर सकते हैं। यह खुद जीवन है, जिस प्रकार केवल वे ही जी सकते हैं जिन्हें जीवन मिला है, वैसे ही सिर्फ वे ही प्यार कर सकते हैं जिन्हें प्यार मिला है। इसलिए प्रभु की आज्ञाएं जीवन जीने का एक तरीका है, जो हमें झूठे प्यार से चंगा करता है। यह आध्यात्मिक जीवन शैली है, जो मुक्ति का रास्ता है। यह खासकर इसलिए है क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं कि प्रभु हमें जीवन की परीक्षाओं में अकेले नहीं छोड़ते। वे हमें सहायक यानी मध्यस्थ सच्चाई की आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं, जो एक ऐसा वरदान है जिसे दुनिया तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि वह बुराई में रहती है, गरीबों पर जुल्म करती, दुर्बलों को अलग करती और बेगुनाह लोगों को मारती है। दूसरी ओर जो लोग सभी के लिए प्रभु के प्यार का प्रत्युत्तर देते हैं, वे पवित्र आत्मा में एक ऐसा साथी पाएंगे जो कभी कमजोर नहीं होता। यीशु कहते हैं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। इसलिए हम ईश्वर की गवाही दे सकते हैं, जो हमेशा और हर जगह प्यार है। प्यार मानव के दिमाग का विचार नहीं है, बल्कि दिव्य जीवन की सच्चाई है, जिसके जरिए सभी चीजें कुछ नहीं से बनाई गईं और मौत से बचाई गईं। संत पापा ने कहा, हमें सच्चा और अमर प्यार देकर यीशु हमारे साथ प्यारे बेटे के रूप में अपनी पहचान साझा करते हैं। मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जीवन का यह सब कुछ शामिल करने वाला मिलन आरोप लगाने वाले को गलत साबित करता है, सहायक के दुश्मन को जो हमारे बचाने वाले का विरोध करता। वास्तव में जहाँ पवित्र आत्मा सच्चाई की ताकत है, वहीं आरोप लगाने वाला झूठ का पिता है, जो मानव को ईश्वर के खिलाफ और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। यीशु जो हमें बुराई से बचाकर और कलीसिया में भाई बहनों के रूप में एक करते हैं, अभियोग लगाने वाले का काम बिल्कुल उल्टा है। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, madre del divino amore.
0: प्यारे मित्रों, इस वरदान के लिए कृतज्ञता से भरकर आइए हम अपने आप को दिव्य प्रेम की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट करें। इतना कहकर संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Regina Celi Laetare Alleluia. Resurrexit sicut dixit Alleluia.
2: Ora pro nobis Deum Alleluia.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: स्वर की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्व भर की विभिन्न घटनाओं की याद की और उनके लिए चिंता जताई। उन्होंने साहेल में हुए आतंकी हमलों से पीड़ित लोगों के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा,
1: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel.
0: मुझे साहेल इलाके में, खासकर चाड और माली में, जहां हाल ही में आतंकी हमले हुए हैं, हिंसा बढ़ने की खबर सुनकर चिंता हो रही है। मैं पीड़ितों के लिए अपनी प्रार्थनाओं और पीड़ित लोगों के साथ अपने सामीप्य का भरोसा दिलाता हूं। मैं हर तरह की हिंसा खत्म होने की उम्मीद करता हूं और उस प्यारी भूमि पर शांति एवं विकास के लिए हर कोशिश को बढ़ावा देता हूँ। उसके बाद कोप्टिक कार्तिक मातृ दिवस की याद कर पोप ने कहा, हर साल 10 मई को कोप्टिक कार्तिक मातृ दिवस मनाया जाता है। मैं परमाध्यक्ष तवाद्रोस द्वितीय को भाईचारे की शुभकामनाएं देता हूं और पूरी प्यारी कोप्टिक कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूं, इस उम्मीद में कि हमारी दोस्ती का सफर हमें मसीह में पूर्ण एकता की ओर ले जाएगा, जिन्होंने हमें मित्र कहा है। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने इटली के अलग अलग शहरों से आए यीशु के पौत्र हृदय के गार्ड्स ऑफ ऑनर दल तथा रेडियो मरिया परिवार से जुड़े सुसमाचार के स्वयं सेवकों के साथ ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाले कॉमन इटालिया स्वयं सेवक संघ का अभिवादन किया।
1: Quiero agradecer la acogida que

0: caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
1: उसके बाद सेंट पापा ने कैनरी द्वीप के लोगों के गर्म जोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा किया, जिसने होंडियूस क्रूज जहाज को हंटा वायरस के मरीजों के साथ बंदरगाह में ठहरने की इजाजत दी। और अपनी आगामी यात्रा की याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि अगले महीने द्वीप के अपने दौरे के समय मैं आपसे मिल पाऊंगा। और अंत में माताओं के विश्व दिवस की याद करते हुए संत पापा ने कहा, आज सभी माताओं के लिए एक खास बात कहना चाहूंगा। येसु की माँ और हमारी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम हर माँ के लिए स्नेह एवं कृतज्ञता की भावना के साथ प्रार्थना करते हैं, खासकर उनके लिए जो सबसे मुश्किल हालात में जी रहे हैं।
0: Grazie, che Dio vi benedica.
1: धन्यवाद, ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
0: E a tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में सूडान गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री कामिल एल तैयब इदरीस अब्देल हाफिज से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य सचिवालय में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन और वाटिकन के राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के उप सचिव मोनसिन्योर मिहाइंटा ब्लाज से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्य सचिवालय में बातचीत अच्छी रही और इसमें वाटिकन और सूडान के बीच अच्छे संबंधों को स्वीकार किया गया। इसमें बताया गया कि चर्चा देश की भलाई के लिए स्थानीय कलीसिया के महत्वपूर्ण योगदान और पिछले 3 सालों से युद्ध से जूझ रहे सूडान में चल रहे गंभीर संकट पर केंद्रित थी। इस बारे में बयान में आगे कहा गया कि युद्ध विराम करने, लोगों की मदद करने और सूडान के सभी पक्षों के बीच ईमानदारी से बातचीत शुरू करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया गया, जिसका मकसद लड़ाई खत्म करना और मिलकर शांति बनाना है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित विभाग और अंतरधार्मिक अध्ययन के लिए रॉयल संस्थान की 8वीं संगोष्ठी के प्रतिभागियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि इस साल आपने जो विषय चुना है, आज के समय में मानवीय दया और हमदर्दी, वह आज की दुनिया के लिए खास तौर पर सही समय पर है। संत पापा ने कहा कि ये मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी धार्मिक परंपराओं के जरूरी पहलू हैं और असल में इंसानी जिंदगी जीने के मायने भी हैं। मुस्लिम परंपरा में दया राफा को ईश्वर की तरफ से विश्वासियों के दिलों में दिए गए एक उपहार के तौर पर दया से जोड़ा गया है और दिव्य नामों में से एक अल रऊफ हमें याद दिलाता है कि दया की शुरुआत हमेशा खुद ईश्वर से होती है। इसी तरह क्रिस्तीय परंपरा में पवित्र ग्रंथ एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताते हैं जो दुख से बेपरवाह नहीं रहते, बल्कि मूसा से कहते हैं, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने उनकी पुकार सुनी है। यीशु क्रिस्त में यह दिव्य दया दिखाई गई है और महसूस की गई है। ईश्वर देखने और सुनने से आगे बढ़कर दया का जीता जागता रूप बन जाते हैं और हमारा मानव स्वभाव अपना लेते हैं। यीशु के उदाहरण पर चलते हुए क्रिस्तीय दया दूसरों के साथ, खासकर सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के साथ दुख सहना बन जाती है। इसी वजह से गरीबों के लिए प्यार, चाहे उनकी गरीबी किसी भी रूप में हो, ईश्वर के दिल के प्रति विश्वस्त कलीसिया की सुसमाचारी पहचान है। हमारी परंपराओं के लिए इंसानी दया और हमदर्दी कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक चीज नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का बुलावा है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी अच्छाई को दिखाएं। संत पापा ने आज के समय में दया और हमदर्दी खत्म होने के खतरे की बात की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में तरक्की ने हमें पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा है, लेकिन इससे बेपरवाही भी हो सकती है। दूसरों की मुश्किलों की तस्वीरों और वीडियो का लगातार आना हमारे दिलों को हिलाने के बजाय उसमें उन्हें उदास कर सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने 8 जुलाई 2013 को लंपेदूसा में अपने प्रवचन में चेतावनी दी थी कि हमें दूसरों की तकलीफ की आदत हो गई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। संत पापा लियो ने कहा कि इस तरह की बेपरवाही हमारे समय की सबसे गंभीर आध्यात्मिक चुनौतियों में से एक बनती जा रही है। ऐसे में क्रिश्चियन और मुसलमान अपनी अपनी परंपराओं की प्रचुरता से प्रेरणा लेते हुए एक सामान्य मिशन के लिए बुलाए गए हैं, जहां इंसानियत ठंडी पड़ गई है, वहां उसे फिर से जिंदा करना, जो लोग परेशान हैं उन्हें आवाज देना और बेपरवाही को एकता में बदलना। दया और हमदर्दी हमारे जरिया हो सकते हैं और उसमें दूसरों की गरिमा वापस लाने की ताकत होती है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में वाटिकन वेदशाला संस्थान के बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की।
उनका सहृदय स्वागत करते हुए उनके काम और उदार समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि यह वाटिकन और विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में वाटिकन सिटी स्टेट का एक प्रिय संस्थान है। संत पापा ने कहा कि 135 साल पहले संत पापा लियो 13वें ने वाटिकन वेदशाला को शुरू किया। हर कोई साफ तौर पर देख सके कि कलीसिया और उसके धर्माधिकारी सच्चे और ठोस विज्ञान के खिलाफ नहीं है, चाहे वह इंसानी हो या दैवी, बल्कि वे उसे अपनाते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं और पूरी लगन से उसे प्रोत्साहित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि आज विज्ञान और धर्म दोनों को एक अलग और शायद ज्यादा खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग जो वस्तुनिष्ठ सच के होने को नकारते हैं, हमारी दुनिया में बहुत से लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि विज्ञान और कलीसिया दोनों स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि हम अपने ग्रह की देखभाल और इस पर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए एक गंभीर जिम्मेदारी लेते हैं, खासकर सबसे कमजोर लोगों की, जिनकी जिंदगी लोगों और प्रकृति दोनों के बेतहाशा इस्तेमाल से खतरे में है। यही वजह है कि कलीसिया का सख्त ईमानदार विज्ञान को अपनाना न सिर्फ कीमती है बल्कि जरूरी भी है। उधर ताइक्वांडो मानवीय संस्थान 8 युवा एथलीटों को इस जून में रोम में होने वाले 2026 वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने का मौका दे रहा है। 4 से 7 जून तक रोम 2026 विश्व ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा। इसमें शामिल होने वालों में जॉर्डन के अराजक रिफ्यूजी कैंप से लगभग 10 साल के 8 युवा एथलीट होंगे। इतालवी ताइक्वांडो संस्थान के समर्थन से ताइक्वांडो मानवीय संस्थान की एक पहल की वजह से इन बच्चों को अपनी जिंदगी में पहली बार रिफ्यूजी कैंप छोड़ने का मौका मिलेगा। रोम में रहने के दौरान एथलीट बच्चों को संत पापा लियो 14वें से मिलने का अवसर मिलेगा और शहर और उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

benedictus est Domine Deus Universum.

Cristo.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: वैटिकन में स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में संत पापा लियो चौदहवें ने विश्वासों को याद दिलाया कि यीशु हमें हमेशा और बिना शर्त प्यार करते हैं और हमारे लिए उनका प्यार हमें दूसरों को प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। वैटिकन स्थित संत पेतरस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 10 मई को पोप लियो चौदहवें ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
0: आज के सुसमाचार पाठ में हमने उन शब्दों को सुना जिन्हें यीशु ने अंतिम ब्यारी के दौरान शिष्यों से कहे थे, जब उन्होंने रोटी और दाखरस को अपने प्यार की जीवित अभिव्यक्ति में बदल दी। ख्रिस्त कहते हैं,
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पोप ने कहा कि यह बात हमें इस गलत फहमी से मुक्त करती है कि हमसे प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, मानो कि हमारा धर्मी होना ईश्वर के प्यार के लिए जरूरी शर्त हो। इसके बदले उन्होंने कहा, ईश्वर का प्यार हमारे धर्मी होने की शर्त है। हम ईश्वर की इच्छा अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन तभी वास्तव में करते हैं जब हम हमारे लिए उनके प्यार को पहचानते हैं, जैसा कि ख्रिस्त दुनिया को दिखाते हैं। इस तरह यीशु के शब्द एक निमंत्रण है कि हम उनसे संबंध जोड़ें, ना कि भेद छिपाना या संदेश पर चेतावनी देना। यही कारण है कि प्रभु हमें एक दूसरे से वैसा ही प्यार करने की आज्ञा देते हैं जैसे उन्होंने हमसे किया है। यह यीशु का प्यार है जो हमारे अंदर प्यार को बढ़ाता है। मसीह खुद सच्चे प्यार के पैमाने हैं, वह प्यार जो हमेशा सच्चा, पवित्र और बिना शर्त के होता है, वह प्यार जो ना तो लेकिन जानता और ना ही शायद, वह प्यार जो बिना कुछ चाहे देता है, वह प्यार जो बदले में कुछ लिए बिना जीवन देता है। क्योंकि ईश्वर ने हमसे पहले प्यार किया है, हम भी प्यार कर सकते हैं, और जब हम सचमुच ईश्वर से प्यार करते हैं, एक दूसरे से भी प्यार कर सकते हैं। यह खुद जीवन है, जिस प्रकार केवल वे ही जी सकते हैं जिन्हें जीवन मिला है, वैसे ही सिर्फ वे ही प्यार कर सकते हैं जिन्हें प्यार मिला है। इसलिए प्रभु की आज्ञाएं जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें झूठे प्यार से चंगा करता है। यह आध्यात्मिक जीवन शैली है जो मुक्ति का रास्ता है। यह खासकर इसलिए है क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं कि प्रभु हमें जीवन की परीक्षाओं में अकेले नहीं छोड़ते। वे हमें सहायक यानी मध्यस्थ सच्चाई की आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं, जो एक ऐसा वरदान है जिसे दुनिया तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि वह बुराई में रहती है, गरीबों पर जुल्म करती, दुर्बलों को अलग करती और बेगुनाह लोगों को मारती है। दूसरी ओर जो लोग सभी के लिए प्रभु के प्यार का प्रत्युत्तर देते हैं, वे पवित्र आत्मा में एक ऐसा साथी पाएंगे जो कभी कमजोर नहीं होता। यीशु कहते हैं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। इसलिए हम ईश्वर की गवाही दे सकते हैं जो हमेशा और हर जगह प्यार है। प्यार मानव के दिमाग का विचार नहीं है, बल्कि दिव्य जीवन की सच्चाई है जिसके जरिए सभी चीजें कुछ नहीं से बनाई गई और मौत से बचाई गई। संत पापा ने कहा, हमें सच्चा और अमर प्यार देकर यीशु हमारे साथ प्यारे बेटे के रूप में अपनी पहचान साझा करते हैं। मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जीवन का यह सब कुछ शामिल करने वाला मिलन आरोप लगाने वाले को गलत साबित करता है, सहायक के दुश्मन को जो हमारे बचाने वाले का विरोध करता। वास्तव में जहाँ पवित्र आत्मा सच्चाई की ताकत है, वहीं आरोप लगाने वाला झूठ का पिता है जो मानव को ईश्वर के खिलाफ और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। यीशु जो हमें बुराई से बचाकर और कलीसिया में भाई बहनों के रूप में एक करते हैं, अभियोग लगाने वाले का काम बिल्कुल उल्टा है। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore.
0: प्यारे मित्रों, इस वरदान के लिए कृतज्ञता से भरकर आइए हम अपने आप को दिव्य प्रेम की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सुपोर्त करें। इतना कहकर संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: रेजीना चेली लेतारे अल्लेलुया Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्व भर की विभिन्न घटनाओं की याद की और उनके लिए चिंता जताई। उन्होंने साहेल में हुए आतंकी हमलों से पीड़ित लोगों के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा,
1: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel.
0: मुझे साहेल इलाके में खासकर चाड और माली में जहां हाल ही में आतंकी हमले हुए हैं हिंसा बढ़ने की खबर सुनकर चिंता हो रही है। मैं पीड़ितों के लिए अपनी प्रार्थनाओं और पीड़ित लोगों के साथ अपने सामीप्य का भरोसा दिलाता हूं। मैं हर तरह की हिंसा खत्म होने की उम्मीद करता हूं और उस प्यारी भूमि पर शांति एवं विकास के लिए हर कोशिश को बढ़ावा देता हूँ। उसके बाद कोप्टिक कार्तिक मैत्री दिवस की याद कर पोप ने कहा, हर साल 10 मई को कोप्टिक कार्तिक मैत्री दिवस मनाया जाता है। मैं परमाध्यक्ष तवाद्रोस द्वितीय को भाईचारे की शुभकामनाएं देता हूं और पूरी प्यारी कोप्टिक कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूं। इस उम्मीद में कि हमारी दोस्ती का सफर हमें मसीह में पूर्ण एकता की ओर ले जाएगा जिन्होंने हमें मित्र कहा है। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने इटली के अलग अलग शहरों से आए येसु के पौत्र हृदय के गार्ड्स ऑफ ऑनर दल तथा रेडियो मरिया परिवार से जुड़े सुसमाचार के स्वयं सेवकों के साथ ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाले कॉमन इटालिया स्वयं सेवक संघ का अभिवादन किया।
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
0: उसके बाद संत पापा ने कैनरी द्वीप के लोगों के गर्म जोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा किया जिसने होंडियूस क्रूज जहाज को हंटा वायरस के मरीजों के साथ बंदरगाह में ठहरने की इजाजत दी। और अपनी आगामी यात्रा की याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि अगले महीने द्वीप के अपने दौरे के समय मैं आपसे मिल पाऊंगा। और अंत में माताओं के विश्व दिवस की याद करते हुए संत पापा ने कहा, आज सभी माताओं के लिए एक खास बात कहना चाहूँगा। येसु की माँ और हमारी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम हर माँ के लिए स्नेह एवं कृतज्ञता की भावना के साथ प्रार्थना करते हैं, खासकर उनके लिए जो सबसे मुश्किल हालात में जी रहे हैं।
1: Grazie, che Dio vi benedica.
0: धन्यवाद, ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में सूडान गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री कामिल एल तैयब इदरीस अब्देल हाफिज से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य सचिवालय में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन और वाटिकन के राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के उप सचिव मोनसिन्योर मिहाइंटा ब्लाच से मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्य सचिवालय में बातचीत अच्छी रही और इसमें वाटिकन और सूडान के बीच अच्छे संबंधों को स्वीकार किया गया। इसमें बताया गया कि चर्चा देश की भलाई के लिए स्थानीय कलीसिया के महत्वपूर्ण योगदान और पिछले 3 सालों से युद्ध से जूझ रहे सूडान में चल रहे गंभीर संकट पर केंद्रित थी। इस बारे में बयान में आगे कहा गया कि युद्ध विराम करने, लोगों की मदद करने और सूडान के सभी पक्षों के बीच ईमानदारी से बातचीत शुरू करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया गया, जिसका मकसद लड़ाई खत्म करना और मिलकर शांति बनाना है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित विभाग और अंतरधार्मिक अध्ययन के लिए रॉयल संस्थान की 8वीं संगोष्ठी के प्रतिभागियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि इस साल आपने जो विषय चुना है, आज के समय में मानवीय दया और हमदर्दी, वह आज की दुनिया के लिए खास तौर पर सही समय पर है। संत पापा ने कहा कि ये मामूली बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी धार्मिक परंपराओं के जरूरी पहलू हैं और असल में इंसानी जिंदगी जीने के मायने भी हैं। मुस्लिम परंपरा में दया राफा को ईश्वर की तरफ से विश्वासियों के दिलों में दिए गए एक उपहार के तौर पर दया से जोड़ा गया है और दिव्य नामों में से एक अल रऊफ हमें याद दिलाता है कि दया की शुरुआत हमेशा खुद ईश्वर से होती है। इसी तरह ख्रिस्तीय परंपरा में पवित्र ग्रंथ एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताते हैं जो दुख से बेपरवाह नहीं रहते, बल्कि मूसा से कहते हैं, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने उनकी पुकार सुनी है। यीशु ख्रिस्त में यह दिव्य दया दिखाई गई है और महसूस की गई है। ईश्वर देखने और सुनने से आगे बढ़कर दया का जीता जागता रूप बन जाते हैं और हमारा मानव स्वभाव अपना लेते हैं। यीशु के उदाहरण पर चलते हुए ख्रिस्तीय दया दूसरों के साथ, खासकर सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के साथ दुख सहना बन जाती है। इसी वजह से गरीबों के लिए प्यार, चाहे उनकी गरीबी किसी भी रूप में हो, ईश्वर के दिल के प्रति विश्वस्त कलीसिया की सुसमाचारी पहचान है। हमारी परंपराओं के लिए इंसानी दया और हमदर्दी कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक चीज नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का बुलावा है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी अच्छाई को दिखाएं। संत पापा ने आज के समय में दया और हमदर्दी खत्म होने के खतरे की बात की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में तरक्की ने हमें पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा है, लेकिन इससे बेपरवाही भी हो सकती है। दूसरों की मुश्किलों की तस्वीरों और वीडियो का लगातार आना हमारे दिलों को हिलाने के बजाय उसमें उन्हें उदास कर सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने 8 जुलाई 2013 को लंपेदूसा में अपने प्रवचन में चेतावनी दी थी कि हमें दूसरों की तकलीफ की आदत हो गई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। संत पापा लियो ने कहा कि इस तरह की बेपरवाही हमारे समय की सबसे गंभीर आध्यात्मिक चुनौतियों में से एक बनती जा रही है। ऐसे में ख्रिस्तीय और मुसलमान अपनी अपनी परंपराओं की प्रचुरता से प्रेरणा लेते हुए एक सामान्य मिशन के लिए बुलाए गए हैं, जहां इंसानियत ठंडी पड़ गई है, वहां उसे फिर से जिंदा करना, जो लोग परेशान हैं, उन्हें आवाज देना और बेपरवाही को एकता में बदलना। दया और हमदर्दी हमारे जरिया हो सकते हैं और उसमें दूसरों की गरिमा वापस लाने की ताकत होती है। और संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के कंसिस्ट्री हॉल में वाटिकन वेदशाला संस्थान के बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की। उनका सहृदय स्वागत करते हुए

उसे बढ़ावा देते हैं और पूरी लगन से उसे प्रोत्साहित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि आज विज्ञान और धर्म दोनों को एक अलग और शायद ज्यादा खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग जो वस्तुनिष्ठ सच के होने को नकारते हैं, हमारी दुनिया में बहुत से लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि विज्ञान और कलीसिया दोनों स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि हम अपने ग्रह की देखभाल और इस पर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए एक गंभीर जिम्मेदारी लेते हैं, खासकर सबसे कमजोर लोगों की, जिनकी जिंदगी लोगों और प्रकृति दोनों के बेतहाशा इस्तेमाल से खतरे में है। यही वजह है कि कलीसिया का सख्त ईमानदार विज्ञान को अपनाना न सिर्फ कीमती है बल्कि जरूरी भी है। उधर ताइक्वांडो मानवीय संस्थान 8 युवा एथलीटों को इस जून में रोम में होने वाले 2026 वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने का मौका दे रहा है। 4 से 7 जून तक रोम 2026 विश्व ताइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा। इसमें शामिल होने वालों में जॉर्डन के अराजक रिफ्यूजी कैंप से लगभग 10 साल के 8 युवा एथलीट होंगे। इतालवी ताइक्वांडो संस्थान के समर्थन से ताइक्वांडो मानवीय संस्थान की एक पहल की वजह से इन बच्चों को अपनी जिंदगी में पहली बार रिफ्यूजी कैंप छोड़ने का मौका मिलेगा। रोम में रहने के दौरान एथलीट बच्चों को संत पापा लियो 14वें से मिलने का अवसर मिलेगा और शहर और उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
3: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त।

0: शरीर और मृत का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे

0: तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु येसु की प्राण पीड़ा।
2: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
0: हे संत

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा सिनोडल कलिसिया एकता, सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग चार, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में चर्चा करेंगे। श्रोताओं, धर्म सभा की प्रक्रिया में इस सवाल पर भी विचार मंथन किया गया है कि रोम के धर्माध्यक्ष अपनी प्रेरिताई का निष्पादन किस रूप में करते हैं। सिनोडालिटी अपने में सभी सामुदायिक धर्माध्यक्षीय मंडल और व्यक्तिगत रूप में स्थानीय कलिसिया और पूरी कलिसिया के बातों को एकात्मक रूप में व्यक्त करती है। इसके प्रकाश में हम पेत्रुस की प्रेरिताई को सिनोडल गतिशीलता में निहित पाते हैं, जैसे कि सामुदायिक आयाम में होती है, जहां हम पूरी ईश प्रजा और धर्माध्यक्षीय मंडल की प्रेरिताई को पाते हैं। इस भांति हम परिषद के पुष्ट सीमा को समझ सकते हैं कि कलिसियाई एकता के अंदर कानूनी रूप में कुछ खास कलिसियाएं हैं जो अपनी परंपराओं का अनुपालन करते हैं, जबकि परम धर्मपीठ की प्रधानता अपने में कायम रहती है, जो करुणा के सार्वभौमिक एकता की अध्यक्षता करती और वैध मतभेदों की रक्षा करती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखती है कि जो विशेष है वह एकता को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसके लिए अनुकूल हो। रोम के धर्माध्यक्ष, जो कलिसिया की एकता के मूलभूत आधार हैं, हमारे लिए सिनोडालिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। यह वे हैं जो कलिसिया में सिनोड का आह्वान करते और उसकी अगुवाई करते हुए उसके परिणामों की पुष्टि करते हैं। संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी स्वरूप विश्वास और नैतिकता की रक्षा करना उनकी एक विशेष जिम्मेदारी बनती है। वे इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि सिनोडल प्रक्रिया हमें एकता और साक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। रोम के धर्माध्यक्ष संघ मिलकर धर्माध्यक्षकों की मंडली की यह एक अपरिहार्य जिम्मेदारी बनती है कि वे पूरी कलिसिया की देखरेख करें और पूरे स्थानीय कलिसिया में सिनोडालिटी को प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, विविधता में एकता के जिम्मेदार व्यक्ति स्वरूप रोम के धर्माध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं की पहचान सदैव बरकरार रहती हो और सदियों से चली आ रही उनका पुरातन ईश शास्त्र, कलिसियाई कानून, धर्म विधि, आध्यात्मिक और प्रेरितिक परंपराओं का सम्मान किया जाता हो। इन कलिसियाओं के संबंध में हम उनकी स्वयं में सिनोडल स्वरूप को देखते हैं, जो पूर्वी रीति की कलिसियाई कानूनों की संहिता में विधिवत संलग्न है। प्राधिधर्माधर्शकों की कलिसिया की धर्म सभा, धर्म प्रांतीय प्राधिधर्माधर्शकों की धर्म सभा, प्रांतीय धर्म सभा, पुरोहितों का परिषद और अंत में विभिन्न स्वतंत्र कलिसियाओं के पुरोहितों का संगठन। आत्मनिर्भर कलिसियाओं के रूप में जो रोम के धर्माध्यक्ष संघ पूर्ण एकता में बने रहते हैं, वे अपनी पहचान और स्वायत्तता हेतु पूर्वी रीति के कलिसियाओं के संग जुड़े रहते हैं। सिनोडालिटी के स्वरूप में यह उचित है कि इतिहास पर एक साथ मिलकर पुनर्विचार किया जाए, जिससे पुराने घावों की चंगाई हो और हम एकता में अधिक गहराई से जीवन यापन कर सकें। इसका अर्थ हमारे लिए यह है कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं और रोमन कोरिया अपने संबंधों की समयोजना पर विचार करें। लातिनी रीति और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के मध्य संबंधों की विशेषता हमें उपहारों के आदान प्रदान, सहयोग और आपसी समृद्धि की मांग करती है। श्रोताओं, इन संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध में सिनोडल धर्म सभा हमें आचार्यों के परिषद गठित करने की मांग करती है। महाधर्माधीक्षकों और पूर्वी रीति कलिसियाओं के अध्यक्ष, जिनकी अगुवाई संत पापा द्वारा की जाती है, जो हमारे लिए सिनोडालिटी और एकता को प्रोत्साहित करने की एक अभिव्यक्ति होती है। परिषद की भूमिका धर्म विधि, ईश शास्त्रीय कानूनी और आध्यात्मिक विरासत को साझा करने का एक माध्यम बने। पूर्वी रीति विश्वासियों का लातिनी रीति के प्रांतों में पलायन करना उनकी पहचान को खतरे में डालने की जोखिम उत्पन्न करती है। इस स्थिति से निपटने के लिए लातिनी कलिसिया और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के बीच सहयोग को जितना हो सके मजबूत बनाने के तरीके और नियमों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। सिनोडल आम सभा लातिनी और पूर्वी रीति के धर्माधीक्षकों के बीच सच्ची वार्ता और भाईचारे वाले सहयोग की सलाह देती है, ताकि उन पूर्वी रीतियों के विश्वासियों के लिए बेहतर पुरोहितिक देखभाल पक्की हो सके, जिनके पास अपने रीति रिवाज के पुरोहित नहीं है, और इसके साथ ही स्वतंत्रता में पूर्वी रीति के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की भागीदारी की गारंटी दी जा सके। अंततः धर्म सभा यह प्रस्तावित करती है कि संत पापा पूर्वी रीति की कलिसियाओं को मजबूत करने और फिर से फलने फूलने के लिए एक विशेष आम सभा का आयोजन करें। श्रोताओं, संत पापा की प्रेरिताई के संबंध में धर्म सभा इस बात को प्रस्तावित करती है कि हमें एक उचित विकेंद्रीकरण के भाव को अपनाने की जरूरत है, जिसकी चाह संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के सामने रखा। प्रेरितिक पत्र सुसमाचार की घोषणा प्रेडिकाते एवेंजेलियम के अनुसार यह विकेंद्रीकरण का अर्थ धर्माध्यक्षकों की योग्यता के अनुरूप समाधान के अधिकार को छोड़ा जाए। शिक्षक और पुरोहित के तौर पर अपने सही कामों को करते हुए वे उन मुद्दों को समझते हैं जिनसे वे वाकिफ हैं और जो कलिसिया के सिद्धांत, अनुशासन और मिलन की एकता पर असर नहीं डालते। वे हमेशा मिलकर जिम्मेदारी की उस भावना के साथ काम करते हैं जो कलिसिया के मिनिस्टीरियम कम्युनियोनिस पर आधारित है। इस दिशा पर विकास करते हुए कोई ईश शास्त्रीय और कलिसियाई कानूनी संहिता की दिशा में एक अध्ययन किया जा सकता है जो इस बात की खोज करता है जिसके संबंध में संत पापा का संबोधन जरूरी है और उन्हें धर्माध्यक्ष गण अपने कलिसिया या छोटे समुदाय में घोषित कर सकते हैं। यह स्वयं से प्रेरित मोतु प्रोप्रियो दस्तावेज कॉम्पिटेंटियास क्वासडम डिसेनेरे के अनुरूप हो। यह दस्तावेज कलिसिया में अनुशासन की एकता और स्थानीय कलिसियाओं और कलिसियाई संस्थानों में कार्य अधिकार को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए नियमों के संबंध में कलिसियाई एकता का आयाम पर आधारित है। यहाँ तक कि कानूनी नियमों को भी उन लोगों द्वारा सिनोडल शैली में विकास किया जाना चाहिए जिनके पास संबंधित जिम्मेदारी और अधिकार हैं, तथा उन्हें कलिसिया की आत्मपरख के फल स्वरूप परिपक्व होने देना चाहिए। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमधम पीठ ने दुनिया के कृषि खाद्य प्रणालियों पर युद्ध, बंदी, जलवायु घटनाओं और राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव पर खेद प्रकट किया है और स्थानीय खाद्य प्रणालियों से मानवीय गरिमा को अपने केंद्र में रखने का आह्वान किया है। फाओ, इफाड और WFP के स्थायी पर्यवेक्षक मोनसिन्योर फर्नांडो कीका अरेलानो ने कृषि खाद्य प्रणाली में मजबूती के लिए वैटिकन की अपील दोहराई। उन्होंने मंगलवार को तजकिस्तान के दुशांबे में हुए यूरोप के लिए UN खाद्य और कृषि संगठन के रीजनल कॉन्फ्रेंस के 35वें सत्र को संबोधित किया। मोनसिन्योर कीका ने कृषि खाद्य सिस्टम को बढ़ावा देने के कॉन्फ्रेंस के लक्ष्य का समर्थन किया कि किसी को भोजन की कमी ना हो, ताकि उन्हें एक शांत एवं पूर्ण जीवन जीने में मदद मिले। उन्होंने हाल के वार्षिक संकटों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के महत्व पर जोर दिया। अंतः मोनसिन्योर ने कहा कि कृषि खाद्य उत्पादन में इंसान की इज्जत को केंद्र में रखना चाहिए, भविष्य से समझौता किए बिना खाने की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और स्थानीय स्तर पर अच्छे काम को बढ़ावा देना चाहिए। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले वैटिकन विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक एवं प्रशिक्षु, जिनमें विदेश में काम करने वाले सदस्य भी शामिल हैं, रोम में एक हफ्ते के लिए एकत्रित हुए ताकि वे आपस में अपनी बातें साझा कर सकें एवं नए सुझाव रख सकें। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि इसका मकसद पूरी दुनिया में पोप और धर्मदक्षों के मिशन का समर्थन करना है। 23 से 30 अप्रैल तक समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले परमधम पीठे विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक और प्रशिक्षु पहल साझा करने और सुझाव देने के लिए रोम स्थित विभाग के मुख्यालय पलाजो सैन कैलिस्टो में एक साथ जमा हुए। इस दौरान उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें तथाकथित विदेश के सहकर्मी भी शामिल थे जो रोम से बाहर काम करते हैं। मुख्य कार्यक्रमों के साथ साथ वैटिकन संग्रहालय का दर्शन, बोर्गो लाउदातो सी का दौरा और संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में पोप लियो 14वें के देवदूत प्रार्थना में हिस्सा लेना भी शामिल था। गहन सप्ताह की परंपरा 2023 में शुरू हुई और तब से नियमित रूप से हर साल आयोजित की जाती है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने इस आयोजन के 3 मुख्य लक्ष्य बताए। अभी के समय में विभाग के मिशन को फिर से समझना, अच्छी तरह काम करने के लिए आंतरिक संपर्क को मजबूत करना और मुख्यालय में काम करने वालों तथा बाहर काम करने वालों के बीच रिश्तों को मजबूत करना, जिससे विभाग की सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। जिन मुद्दों पर बातें हुई उनके बारे में कार्डिनल प्रीफेक्ट ने कहा कि विभाग ऊपर से प्राथमिकता तय नहीं करता, बल्कि स्थानीय कलीसिया की सुनता और उनके स्थिति में समग्र मानव विकास में रुकावट डालने वाली चीजों को दूर करने के उनके मिशन में अपना साथ देता है। इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए विभाग की सचिव सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली ने इस हफ्ते को रोज के काम से अवकाश लेने और ऊर्जा वापस लाने का समय बताया। उप सचिव मोनसिन्योर जोसेफ बर्लास ने इस बात पर जोर दिया कि रोम से बाहर रहकर काम करना सिर्फ एक रसद संबंधी मामला नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर कोने में मौजूद कलीसिया की एक छवि है। कार्यक्रम के अंत में कार्डिनल चर्नी ने हिस्सा लेने वालों से दुनिया के अलग अलग इलाकों में आ रही मुसीबतों का सामना करते हुए सावधान और सहयोगी बने रहने की अपील की, साथ ही उदार सेवा के लिए विभाग के साथ सहयोग के नए तरीकों की उम्मीद जताई। उन्होंने कैमरून के प्रेरित यात्रा के दौरान मध्य अफ्रीकी कार्तिक यूनिवर्सिटी में पोप लियो 14वें के भाषण का एक हिस्सा भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि असल में कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह सही विवेक पर आधारित ना हो। पोप के बताए इस नजरिए से कार्डिनल ने कहा, विभाग के दैनिक कार्यों को प्रेरित सेवा और एक चुनौती दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। जॉर्जिया की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पौत्र सिनड ने 11 मई को पूरे जॉर्जिया के लिए एक कार्तिक प्राधिधर्माध्यक्ष का चुनाव किया। अतिमान्य ने शियो तृतीया को समस्त जॉर्जिया के लिए कार्तिक प्राधिधर्माध्यक्ष चुना गया है। चुनाव के मौके पर क्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट
कार्डिनल कूट कोच ने बधाई का संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने नए प्राधिधर्माध्यक्ष के यीशु ख्रिस्त के झुंड की देखभाल करने के बुलावे की अहमियत पर जोर दिया है और उम्मीद जताई है कि उनकी प्रेरिताएं हमारी कलीसिया के बीच एकता, उदारता और भ्रातृत्व के संवाद को मजबूत करने में मदद करेगी। सऊदी अरब में 200 इथोपियाई अप्रवासियों को फांसी की सजा मिलने वाली है। ऐसे में आदिग्रास के कार्तिक धर्मगुरु अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बातचीत एवं रहम की अपील कर रहे हैं। खबर है कि सऊदी अरब में आने वाले दिनों में इथोपियाई मूल के 200 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है, जिनमें से ज्यादातर जवान हैं। कुछ दिनों पहले ऑनलाइन समाचार पत्र अदिस स्टैंडर्ड ने तीगरे युवा कार्यक्रम के आंकड़े का हवाला देते हुए यह समाचार दी थी। मानवाधिकार देखभाल, जो मानव अधिकार रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, सीधे तौर पर इस संख्या की पुष्टि नहीं कर सकी है, लेकिन उसने बताया है कि 65 इथोपियाई अप्रवासी जो पहले से ही ड्रग तस्करी और उसे रखने से जुड़े अपराधों में दोषी पाए जा चुके हैं, इस समय खामिस मुशाद जेल में बंद हैं। खबर है कि 21 अप्रैल को मौत की 3 सजाएं दी गईं। मानवाधिकार देखभाल इन 3 कैदियों की स्थिति से परिचित सूत्रों से संपर्क करने में कामयाब रहा, जिन्होंने बताया कि वे शरणार्थी हैं। खबर है कि वे 2020 और 2022 के बीच टाइग्रे क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष के दौरान भाग गए थे, जहां आज भी मानवीय स्थिति बहुत खराब है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने खतरनाक पूर्वी रास्ता लिया, जो जिबूती और यमन से होकर गुजरा, और फिर वे अपनी अंतिम मंजिल पहुंचे और 2023 एवं 2024 के बीच सऊदी पुलिस ने उन्हें आभा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया, जहां वे काम कर रहे थे। उनके पास जो चीजें मिली वह खात है, एक पौधा जो सऊदी अरब में प्रतिबंधित है, जहां ड्रग्स से जुड़े बहुत सख्त कानून हैं। खात पूर्वी अफ्रीका की एक झाड़ी है, जिसकी पत्तियों को चबाने पर ड्रग जैसा उत्तेजक असर होता है। 5 मई को अधिग्रहित के कार्तिक धर्माध्यक्ष टेस्फा सेलासी मेदिन ने मानव प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवीय एजेंसियों से दिल से अपील करते हुए 200 कैदियों की जान बचाने की मांग की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा सिनोडल कलिसिया एकता, सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में चर्चा करेंगे। श्रोताओं, धर्म सभा की प्रक्रिया में इस सवाल पर भी विचार मंथन किया गया है कि रोम के धर्माध्यक्ष अपनी प्रेरिताई का निष्पादन किस रूप में करते हैं। सिनोडालिटी अपने में सभी सामुदायिक धर्माध्यक्षीय मंडल और व्यक्तिगत रूप में स्थानीय कलिसिया और पूरी कलिसिया के बातों को एकात्मक रूप में व्यक्त करती है। इसके प्रकाश में हम पेत्रुस की प्रेरिताई को सिनोडल गतिशीलता में निहित पाते हैं, जैसे कि सामुदायिक आयाम में होती है, जहां हम पूरी ईश प्रजा और धर्माध्यक्षीय मंडल की प्रेरिताई को पाते हैं। इस भांति हम परिषद के पुष्ट सीमा को समझ सकते हैं कि कलिसियाई एकता के अंदर कानूनी रूप में कुछ खास कलिसियाएं हैं जो अपनी परंपराओं का अनुपालन करते हैं, जबकि परम धर्मपीठ की प्रधानता अपने में कायम रहती है, जो करुणा के सार्वभौमिक एकता की अध्यक्षता करती और वैध मतभेदों की रक्षा करती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखती है कि जो विशेष है वह एकता को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसके लिए अनुकूल हो। रोम के धर्माध्यक्ष जो कलिसिया की एकता के मूलभूत आधार हैं, हमारे लिए सिनोडालिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। यह वे हैं जो कलिसिया में सिनोड का आह्वान करती और उसकी अगुवाई करते हुए उसके परिणामों की पुष्टि करते हैं। संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी स्वरूप विश्वास और नैतिकता की रक्षा करना उनकी एक विशेष जिम्मेदारी बनती है। वे इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि सिनोडल प्रक्रिया हमें एकता और साक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। रोम के धर्माध्यक्ष संघ मिलकर धर्माध्यक्षकों की मंडली की यह एक अपरिहार्य जिम्मेदारी बनती है कि वे पूरी कलिसिया की देखरेख करें और पूरे स्थानीय कलिसिया में सिनोडालिटी को प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, विविधता में एकता के जिम्मेदार व्यक्ति स्वरूप रोम के धर्माध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं की पहचान सदैव बरकरार रहती हो और सदियों से चली आ रही उनका पुरातन ईश शास्त्र, कलिसियाई कानून, धर्म विधि, आध्यात्मिक और प्रेरितिक परंपराओं का सम्मान किया जाता हो। इन कलिसियाओं के संबंध में हम उनकी स्वयं में सिनोडल स्वरूप को देखते हैं, जो पूर्वी रीति की कलिसियाई कानूनों की संहिता में विधिवत संलग्न है। प्राधिधर्माधर्शकों की कलिसिया की धर्म सभा, धर्म प्रांतीय प्राधिधर्माधर्शकों की धर्म सभा, प्रांतीय धर्म सभा, पुरोहितों का परिषद और अंत में विभिन्न स्वतंत्र कलिसियाओं के पुरोहितों का संगठन। आत्मनिर्भर कलिसियाओं के रूप में जो रोम के धर्माध्यक्ष संघ पूर्ण एकता में बने रहते हैं, वे अपनी पहचान और स्वायत्तता हेतु पूर्वी रीति के कलिसियाओं के संग जुड़े रहते हैं। सिनोडालिटी के स्वरूप में यह उचित है कि इतिहास पर एक साथ मिलकर पुनर्विचार किया जाए, जिससे पुराने घावों की चंगाई हो और हम एकता में अधिक गहराई से जीवन यापन कर सकें। इसका अर्थ हमारे लिए यह है कि पूर्वी रीति की कलिसियाओं और रोमन कोरिया अपने संबंधों की समयोजना पर विचार करें। लातिनी रीति और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के मध्य संबंधों की विशेषता हमें उपहारों के आदान प्रदान, सहयोग और आपसी समृद्धि की मांग करती है। श्रोताओं, इन संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध में सिनोडल धर्म सभा हमें आचार्यों के परिषद गठित करने की मांग करती है। महाधर्माधीक्षकों और पूर्वी रीति कलिसियाओं के अध्यक्ष, जिनकी अगुवाई संत पापा द्वारा की जाती है, जो हमारे लिए सिनोडालिटी और एकता को प्रोत्साहित करने की एक अभिव्यक्ति होती है। परिषद की भूमिका धर्म विधि, ईश शास्त्रीय, कानूनी और आध्यात्मिक विरासत को साझा करने का एक माध्यम बने। पूर्वी रीति विश्वासियों का लातिनी रीति के प्रांतों में पलायन करना उनकी पहचान को खतरे में डालने की जोखिम उत्पन्न करती है। इस स्थिति से निपटने के लिए लातिनी कलिसिया और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के बीच सहयोग को जितना हो सके मजबूत बनाने के तरीके और नियमों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। सिनोडल आम सभा लातिनी और पूर्वी रीति के धर्माधीक्षकों के बीच सच्ची वार्ता और भाईचारे वाले सहयोग की सलाह देती है, ताकि उन पूर्वी रीतियों के विश्वासियों के लिए बेहतर पुरोहितिक देखभाल पक्की हो सके, जिनके पास अपने रीति रिवाज के पुरोहित नहीं है। और इसके साथ ही स्वतंत्रता में पूर्वी रीति के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की भागीदारी की गारंटी दी जा सके। अंततः धर्म सभा यह प्रस्तावित करती है कि संत पापा पूर्वी रीति की कलिसियाओं को मजबूत करने और फिर से फलने फूलने के लिए एक विशेष आम सभा का आयोजन करें। श्रोताओं, संत पापा की प्रेरिताई के संबंध में धर्म सभा इस बात को प्रस्तावित करती है कि हमें एक उचित विकेंद्रीकरण के भाव को अपनाने की जरूरत है, जिसकी चाह संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के सामने रखा। प्रेरितिक पत्र सुसमाचार की घोषणा प्रेडिकाते एवेंजेलियम के अनुसार यह विकेंद्रीकरण का अर्थ धर्माध्यक्षकों की योग्यता के अनुरूप समाधान के अधिकार को छोड़ा जाए, शिक्षक और पुरोहित के तौर पर अपने सही कामों को करते हुए वे उन मुद्दों को समझते हैं जिनसे वे वाकिफ हैं और जो कलिसिया के सिद्धांत, अनुशासन और मिलन की एकता पर असर नहीं डालते। वे हमेशा मिलकर जिम्मेदारी की उस भावना के साथ काम करते हैं जो कलिसिया के मिनिस्टीरियम कम्युनियोनिस पर आधारित है। इस दिशा पर विकास करते हुए कोई इस शास्त्रीय और कलिसियाई कानूनी संहिता की दिशा में एक अध्ययन किया जा सकता है जो इस बात की खोज करता है जिसके संबंध में संत पापा का संबोधन जरूरी है और उन्हें धर्माध्यक्ष गण अपने कलिसिया या छोटे समुदाय में घोषित कर सकते हैं। यह स्वयं से प्रेरित मोतु प्रोप्रियो दस्तावेज कॉम्पिटेंटियास क्वासडम डिसेनेरे के अनुरूप हो। यह दस्तावेज कलिसिया में अनुशासन की एकता और स्थानीय कलिसियाओं और कलिसियाई संस्थानों में कार्य अधिकार को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए नियमों के संबंध में कलिसियाई एकता का आयाम पर आधारित है। यहाँ तक कि कानूनी नियमों को भी उन लोगों द्वारा सिनोडल शैली में विकास किया जाना चाहिए जिनके पास संबंधित जिम्मेदारी और अधिकार हैं, तथा उन्हें कलिसिया की आत्मपरख के फल स्वरूप परिपक्व होने देना चाहिए। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। परमधम पीठ ने दुनिया के कृषि खाद्य प्रणालियों पर युद्ध, बंदी, जलवायु घटनाओं और राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव पर खेद प्रकट किया है और स्थानीय खाद्य प्रणालियों से मानवीय गरिमा को अपने केंद्र में रखने का आह्वान किया है। फाओ, इफाड और WFP के स्थायी पर्यवेक्षक मोनसिन्योर फर्नांडो कीका अरेलानो ने कृषि खाद्य प्रणाली में मजबूती के लिए वैटिकन की अपील दोहराई। उन्होंने मंगलवार को तजकिस्तान के दुशांबे में हुए यूरोप के लिए UN खाद्य और कृषि संगठन के रीजनल कॉन्फ्रेंस के 35वें सत्र को संबोधित किया। मोनसिन्योर कीका ने कृषि खाद्य सिस्टम को बढ़ावा देने के कॉन्फ्रेंस के लक्ष्य का समर्थन किया कि किसी को भोजन की कमी ना हो, ताकि उन्हें एक शांत एवं पूर्ण जीवन जीने में मदद मिले। उन्होंने हाल के वैश्विक संकटों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के महत्व पर जोर दिया। अंततः मोनसिन्योर ने कहा कि कृषि खाद्य उत्पादन में इंसान की इज्जत को केंद्र में रखना चाहिए, भविष्य से समझौता किए बिना खाने की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और स्थानीय स्तर पर अच्छे काम को बढ़ावा देना चाहिए। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले वैटिकन विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक एवं प्रशिक्षु, जिनमें विदेश में काम करने वाले सदस्य भी शामिल हैं, रोम में एक हफ्ते के लिए एकत्रित हुए ताकि वे आपस में अपनी बातें साझा कर सकें एवं नए सुझाव रख सकें। विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि इसका मकसद पूरी दुनिया में पोप और धर्मदक्षों के मिशन का समर्थन करना है। 23 से 30 अप्रैल तक समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले परमधम पीठे विभाग के कर्मचारी, सहयोगी, स्वयंसेवक और प्रशिक्षु पहल साझा करने और सुझाव देने के लिए रोम स्थित विभाग के मुख्यालय पलाजो सैन कैलिस्टो में एक साथ जमा हुए। इस दौरान उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें तथाकथित विदेश के सहकर्मी भी शामिल थे जो रोम से बाहर काम करते हैं। मुख्य कार्यक्रमों के साथ साथ वैटिकन संग्रहालय का दर्शन, बोर्गो लाउदातो सी का दौरा और संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में पोप लियो 14वें के देवदूत प्रार्थना में हिस्सा लेना भी शामिल था। गहन सप्ताह की परंपरा 2023 में शुरू हुई और तब से नियमित रूप से हर साल आयोजित की जाती है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने इस आयोजन के 3 मुख्य लक्ष्य बताए। अभी के समय में विभाग के मिशन को फिर से समझना, अच्छी तरह काम करने के लिए आंतरिक संपर्क को मजबूत करना और मुख्यालय में काम करने वालों तथा बाहर काम करने वालों के बीच रिश्तों को मजबूत करना, जिससे विभाग की सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। जिन मुद्दों पर बातें हुई उनके बारे में कार्डिनल प्रीफेक्ट ने कहा कि विभाग ऊपर से प्राथमिकता तय नहीं करता, बल्कि स्थानीय कलीसिया की सुनता और उनके स्थिति में समग्र मानव विकास में रुकावट डालने वाली चीजों को दूर करने के उनके मिशन में अपना साथ देता है। इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए विभाग की सचिव सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली ने इस हफ्ते को रोज के काम से अवकाश लेने और ऊर्जा वापस लाने का समय बताया। उप सचिव मोनसिन्योर जोसेफ बर्लास ने इस बात पर जोर दिया कि रोम से बाहर रहकर काम करना सिर्फ एक रसद संबंधी मामला नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर कोने में मौजूद कलीसिया की एक छवि है। कार्यक्रम के अंत में कार्डिनल चर्नी ने हिस्सा लेने वालों से दुनिया के अलग अलग इलाकों में आ रही मुसीबतों का सामना करते हुए सावधान और सहयोगी बने रहने की अपील की, साथ ही उदार सेवा के लिए विभाग के साथ सहयोग के नए तरीकों की उम्मीद जताई। उन्होंने कैमरून के प्रेरितिक यात्रा के दौरान मध्य अफ्रीकी कार्तिक यूनिवर्सिटी में पोप लियो 14वें के भाषण का एक हिस्सा भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि असल में कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह सही विवेक पर आधारित ना हो। पोप के बताए इस नजरिए से कार्डिनल ने कहा, विभाग के दैनिक कार्यों को प्रेरितिक सेवा और एक चुनौती दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। जॉर्जिया की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पौत्र सिनड ने 11 मई को पूरे जॉर्जिया के लिए एक कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्ष का चुनाव किया। अतिमान्य ने शियो तृतीया को समस्त जॉर्जिया के लिए कैथोलिक प्राधिधर्माध्यक्ष चुना गया है।
चुनाव के मौके पर क्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कूट कोच ने बधाई का संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने नए प्राधिधर्माध्यक्ष के यीशु ख्रिस्त के झुंड की देखभाल करने के बुलावे की अहमियत पर जोर दिया है और उम्मीद जताई है कि उनकी प्रेरिताएं हमारी कलीसिया के बीच एकता, उदारता और भ्रातृत्व के समाज को मजबूत करने में मदद करेगी। सऊदी अरब में 200 इथोपियाई अप्रवासियों को फांसी की सजा मिलने वाली है। ऐसे में आदिग्रास के कार्तिक धर्मगुरु अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बातचीत एवं रहम की अपील कर रहे हैं। खबर है कि सऊदी अरब में आने वाले दिनों में इथोपियाई मूल के 200 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है, जिनमें से ज्यादातर जवान हैं। कुछ दिनों पहले ऑनलाइन समाचार पत्र अदी स्टैंडर्ड ने तीगरे युवा कार्यक्रम के आंकड़े का हवाला देते हुए यह समाचार दी थी। मानवाधिकार देखभाल, जो मानव अधिकार रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, सीधे तौर पर इस संख्या की पुष्टि नहीं कर सकी है, लेकिन उसने बताया है कि 65 इथोपियाई अप्रवासी जो पहले से ही ड्रग तस्करी और उसे रखने से जुड़े अपराधों में दोषी पाए जा चुके हैं, इस समय खामिस मुशाद जेल में बंद हैं। खबर है कि 21 अप्रैल को मौत की 3 सजाएं दी गईं। मानवाधिकार देखभाल इन 3 कैदियों की स्थिति से परिचित सूत्रों से संपर्क करने में कामयाब रहा, जिन्होंने बताया कि वे शरणार्थी हैं। खबर है कि वे 2020 और 2022 के बीच टाइग्रे क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष के दौरान भाग गए थे, जहां आज भी मानवीय स्थिति बहुत खराब है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने खतरनाक पूर्वी रास्ता लिया, जो जिबूती और यमन से होकर गुजरा और फिर वे अपनी अंतिम मंजिल पहुंचे और 2023 एवं 2024 के बीच सऊदी पुलिस ने उन्हें आभा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया, जहां वे काम कर रहे थे। उनके पास जो चीजें मिली वह खात है, एक पौधा जो सऊदी अरब में प्रतिबंधित है, जहां ड्रग्स से जुड़े बहुत सख्त कानून हैं। खात पूर्वी अफ्रीका की एक झाड़ी है, जिसकी पत्तियों को चबाने पर ड्रग जैसा उत्तेजक असर होता है। 5 मई को अधिग्रहित के कार्तिक धर्माध्यक्ष टेस्फा सेलासी मेदिन ने मानव प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवीय एजेंसियों से दिल से अपील करते हुए 200 कैदियों की जान बचाने की मांग की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।